0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुनीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। It was a great pleasure to listen to the poem The Crow in musical manner today. What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम

हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 मेगाबाइट। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल

0: हो गया श्रोताओ, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओ, अगर 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओ, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओ, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा

0: अभी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
2: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
3: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
4: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज पत्ती फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
6: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
7: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
8: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सके।
9: वीर जोरावर की
10: जय।
9: वीर जोरावर की
10: जय।
9: जय जेरापुर जय भारत।
10: जय जेरापुर जय भारत।
7: राजा जोरावर सिंह,
11: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
12: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
11: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
12: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
13: महाराज,

0: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
1: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
0: जी।
1: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
0: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल।
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज, वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
2: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
8: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।

0: आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
0: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
1: शाबाश, शाबाश, सारा जंग मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
3: हुजूर।
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: फौजियाओ, ले चलो इसको।
0: चलो मुझे, चलो, हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए।

0: उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: वाय?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो नहीं मानोगे। देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: Actually, you are a fool.
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: நீங்கள் இதுவரை தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய கல்வி ஒலிபரப்பு விளம்பரதார நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் செய்தி சுருக்கம். சென்னை அஞ்சல்.